0: Orchid Scraps, MSN Chats and Bollywood Bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Arey ho Samba, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Rewind your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Canada. All about the hits. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Y2K vibes, filmy feels.

0: Big 106.2. 106.2. The beat of Bollywood.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: Y2K vibes, filmy feels.

0: Rewind your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।

0: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
1: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज शिरिन ऑन बिग 106.2। तो शनिवार की सुबह आप लोगों की बहुत लाजवाब चल रही होगी, उसको और ज़्यादा लाजवाब और मनोरंजक बनाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू ऑफ कोर्स लिसन टू सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव समथिंग दैट आई नीड टू टॉक अबाउट। देखिए, कुछ ऐसी मूवीज बन जाती हैं बॉलीवुड में और बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज में भी, जो कि बनने के बाद जो है एकदम क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि ये बनेगी इसकी सीक्वल, ये नहीं बनेगी क्या होगा, है ना। कुछ ऐसी मूवीज़ भी होती हैं और कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनको जो है बहुत ही हिट होती है, बहुत अच्छी बन जाती है और उसको बाद में जो है उसका रीमेक बना के उसको बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आज दूंगी, बट ऑल ऑफ दीज मूवीज़ वुड बी वर्थ वॉचिंग। तो आज बहुत सारे गाने भी सुनेंगे और सैटरडे को जो है अमेजिंग बनाएंगे विथ मी शिरिन। लेट्स गो एंड लिसन टू दिस सॉन्ग।

The Big Millennial Weekender, this is me Shirin on Big 106.2. तो देखिए ऐसी एक मूवी जिसकी जो है सीक्वल सबने एक्सपेक्ट किया था, दैट इज आंखें. आई थिंक आंखें वॉज अ वेरी टॉक्ड अबाउट मूवी. उसमें जो है अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल, अमिताभ बच्चन, परेश रावल एंड सुष्मिता सेन, एवरीबडी डिड अ फैबुलस जॉब. द स्टोरी लाइन वॉज रियली रियली अमेजिंग. थोड़ा उसमें बॉलीवुड का तड़का भी लगा है साथ में, लेकिन जो है थोड़ा रोमांस वगैरह डाल के, लेकिन साथ ही में जो है मुझे लगता है उसमें जिस तरह से उन्होंने मूवी को लेके गए और एक क्लिफहैंगर पे छोड़ दिया, फिर हमें नहीं पता कि क्या होगा आगे. मतलब मैं क्या करूं, मैं सोचती रहूं कि क्या होगा आगे. यार थोड़ा सा तो बताओ उसके बाद उनकी जिंदगियों में क्या होता है, उनकी आंखें वापस मिल जाती हैं, क्या होता है, नहीं होता है, व्हाट हैपेंस, डू दे रियली बिकम रिच, क्योंकि उनको मतलब फाइनली जो है उनको बहुत सारा सोना एंड पैसा एंड हीरा वो सब मिल जाता है. सो व्हाट हैपेंस, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस अमिताभ बच्चन के साथ, क्या अमिताभ बच्चन बाद में आके जो है रिवेंज लेते हैं, व्हाट हैपेंस, आई रियली वांट टू नो. प्लीज ये अगर जो है हमारे मूवी मेकर्स अगर सुन रहे हैं तो प्लीज गो एंड मेक अ सीक्वल टू आंखें, इट्स स्टिल नॉट टू लेट. लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन दैट नोट.

The Big Millennial Weekender, this is me Shirin on Big 106.2. तो एक और मूवी ऐसी है जिसका जो है सीक्वल अगर बना तो सब पक्का देखेंगे और सब शायद वेट भी कर रहे होंगे, वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस मूवी को दोबारा देखो, तिबारा देखो, कितने भी बार देखो, सब एंजॉय करते हैं। एवरी टाइम वी फील कि यार जिंदगी हो तो ऐसी हो। मतलब उसमें एक कैरेक्टर है ऋतिक रोशन का, जिसमें कि वो प्लान करता रहता है और वो बोलता है कि 40 के बाद फिर मैं जिंदगी में जो है जीऊँगा, तब तक मैं पैसे कमाऊँगा। ये मैं हूँ, ये एक्चुअली मैं हूँ, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है, वो कैरेक्टर मैं हूँ। लेकिन क्या होता है ना, हम जीना भूल जाते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम इस मूवी में देखते हैं। वी अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट ऑन ईच एंड एवरी मोमेंट। ये सब चीज़ें हम लोग जो है इस मूवी में देखते हैं। बट ये जाके फिर फाइनली सारे मिल जाते हैं, यू नो, दे ऑल फाइंड देयर सोलमेट्स, देयर बेटर हाफ्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, क्या कैटरीना कैफ का कैरेक्टर और ऋतिक रोशन का कैरेक्टर जो है साथ में एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जीते हैं, या बाद में ऐसा हो जाता है कि ऋतिक बोलता है कि नहीं पैसा मेरे को और कमाना है, या वो बोलता है अब मुझे पैसे नहीं कमाने, क्या होता है उनकी ज़िंदगी में, होता क्या है, ये हम सबको जानना है। तो ज़िंदगी ना मिलेगी।

आके सब चले जाते हैं ट्रिप पे और उसके ऊपर एक मूवी बनाओ, है ना. तो आई होप दैट यू नो ऑल ऑफ यू थिंक द सेम वे दैट आई एज आई डू. अभी जो है फिलहाल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. अगर वीकेंड में देख रहे हो देख लो, ट्रैवल वगैरह का प्लानिंग वगैरह कर लो, सोच लो, वैसे भी वेकेशन आ रहे हैं. राइट, ऑन दैट नोट लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग.

मिलेनियल्स वीकेंडर, दिस इज मी शिरिन ऑन बिग 106.2। तो देखिए, दो ऐसी मूवीज के तो मैंने नाम ले दिए आप लोगों के लिए, जो कि है आंखें और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिनकी सीक्वल्स बननी चाहिए। यस, ऑल ऑफ अस थिंक द सेम। लेकिन ऐसी एक मूवी जिनकी सीक्वल बनी और ऐसा लगा यार क्यों ये किया हमारे साथ, हमें सदमा लग गया, वो है बंटी और बबली का जो सीक्वल बना था। आई रियली फर्स्ट ऑफ ऑल डिड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब एक मूवी है यार, तुम जो कोर कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को रखो, तुमने कैरेक्टर को चेंज कर दिया, अभिषेक बच्चन की जगह पे सैफ अली खान को रख दिया। सैफ अली खान इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर डेफिनेटली, बट देन इस रोल को जिस खूबसूरती के साथ अभिषेक बच्चन ने निभाया था, उसको कंटिन्यू अगर करते तो शायद थोड़ा बहुत यू कैन रिलेट। लेकिन फर्स्ट मूवी इतनी गोटेड थी, इतनी अमेजिंग थी, उसके गाने, उसका एवरीथिंग, यू नो, लाइक रानी मुखर्जीज कैरेक्टर देयर, it was like every girl in the millennial times who wanted to become Miss India, hai na, aisa tha uska character. Aur Abhishek Bachchan ka jo character tha, every boy in the millennial times who wanted to have a business of his own and did not want to succumb to his father's wishes, hai na. To ye cheeze bahut relatable thi, aur iski sequel jo bani, bhai kyu bani, mat dekhna is movie ko, mat dekhna sequel ko, mat dekhna, lekin Banti aur Babli agar nahi dekhi hai to dekhna zarur, agar dekhi bhi hai tab bhi dekhna. On that note, let's go and listen to the next song.

The Big Millennial Weekender, this is me, Shirin, on Big 106.2. तो मैंने आपको बताई ऐसी मूवीज जिनकी सीक्वल बनी, जिनकी नहीं बनी, लेकिन अब मैं बताऊंगी आपको एक ऐसी मूवी जिसको जो है रीमेक जिसका बना दिया. जैसे ये मूवी है खूबसूरत. ऑफ कोर्स प्लीज, जब मैं खूबसूरत बोलूंगी तो आपको शायद याद आएगा सोनम कपूर का जो मूवी उन्होंने बनाई थी वो. लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो ओजी मूवी थी विच वॉज स्टारिंग रेखा, जो बहुत बहुत पहले बनी थी, even before the millennial times, that was so magical, so nice, so you know, so romantic and so light hearted. Us movie ko jo hai unhone remake karke, I really don't think they did justice. First of all, usme jo simplicity thi us movie mein, jo things were so simple and so nice and so naive and everything, wo cheez isme bahut missing thi. Aur usme jo background music hai us movie mein khoobsurat mein, I think that background music was so nice, so relatable, so everyday kind, you know. तो वो सब चीज़ें जो है इस जो न्यू मूवी उन्होंने जिसको रीमेक बना के उसका पूरा कबाड़ा कर दिया उसमें बिल्कुल भी नहीं था. आई डोंट थिंक सो इट वॉज देयर. इफ़ यू थिंक कि नया वाला खूबसूरत वॉज बेटर दैन द ओल्ड वन, देन यू मस्ट डेफिनेटली गो एंड वॉच द ओल्ड वन. रेखा स्टारर मूवी है, राकेश रोशन भी हैं उसमें, एंड उनके बीच में जो छोटी सी केमिस्ट्री भी दिखती है ना, दैट इज़ अमेजिंग, रियली नाइस. बहुत ही गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ वाइब लाती हैं रेखा उसमें. बट आई थिंक इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, यू मस्ट गो एंड वॉच एंड लेट मी नो. हमारे बिग के जो है इंस्टाग्राम पेज पे हमें बताइए, 106.2 बिग, और मेरा जो पेज है इंस्टाग्राम पे hustler_shirin, उस पे भी आप हमें बता सकते हैं. ऑन दैट नोट, लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Big 106.2

0: shining sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me.
1: The Big Millennial Weekender, मैं हूँ शिरन, Big 106.2 पर. तो आज के जो है शो के ऑलमोस्ट समाप्ति पे हम पहुँच चुके हैं, और मेरा जो लास्ट जिस मूवी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो वंस अगेन एक रीमेक मूवी है, विच इज़ द रीमेक ऑफ जुड़वा. यार नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. पहली जो जुड़वा मूवी है उसमें सलमान ने जिस तरह से, सलमान खान ने उसमें एक्ट किया है, ऑफकोर्स बहुत ही लाइट हार्टेड और बहुत ही नॉनसेंसिकल कॉमेडी वगैरह है उसमें. करिश्मा कपूर, रंभा, एवरीबडी हैज़ डन अ फैब जॉब. लेकिन इसको जब इन्होंने रीमेक बनाया, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं लाए. बस फ़र्क इतना लाए कि नए जुड़वा में पुराने जुड़वा के, हमारे जो सलमान खान के जो जुड़वा रोल्स हैं उसको लेके आए, थोड़ा सा कैमियो करवा दिया बस. मतलब पिगी बैकिंग on the success of a previously very well made movie is not really the way it should be, है ना. मतलब थोड़ा बहुत तुम उस पर उसके ऊपर पिगी बैक कर लो, लेकिन उसको जो है जब रीमेक बना रहे हो उसको थोड़ा बेटर बनाओ या कुछ अलग बनाओ, देन कोई बात है, राइट. तो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच जुड़वा, डोंट वॉच द न्यू वन, यू मस्ट वॉच द ओजी.

वन विच इज द ओल्ड वन. तो आप लोगों के वीकेंड का जो है पूरा मैंने आपको प्लान बता दिया है, जाइए वीकेंड एंजॉय कीजिए एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट सैटरडे. अंटिल देन कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग.

मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छूटी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

0: 93.2, the beat of Bollywood. All my favorite music.
1: Turn it up.
0: The 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
2: Happy weekend. Yes, playing you the top 40 biggest hits of the week with the Big Bollywood Countdown. And Mansi, the next 3 hours, the 40 chart busters, the bangers of the week. Aap yahan sunne wale hain. Starting with gana number 40 from Baby Do Die Do, jiska main OTT pe release hone ka intezaar kar rahi hoon. Saqib and Huma, siblings, inhone hi produce kari hai movie and some great reviews coming in. Huma Qureshi ki bahut tareef ki ja rahi hai for Baby Do Die Do. And I have to say, in the world of recreating music, kafi kamal gana inhone choose kara hai to recreate for the movie. इस हफ्ते नंबर 40 पर. एंड जैसा मैंने कहा कि बॉलीवुड इज लविंग द ट्रेंड ऑफ रिक्रिएटिंग द 90s के गाने. एक और ऐसा गाना जो इस हफ्ते नंबर 39 पे है, ओरिजिनली फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर 1, डेविड धवन की ही मूवी, रिक्रिएट भी हुआ है डेविड साहब की ही मूवी में, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. So, जब ये गाना रिलीज हुआ था, there was a social media buzz. It trended online, but a lot of people were complaining कि नहीं, original गाना अच्छा है. But this is not for you and I. This is for the Gen Zs and they are loving it. And that is why still on number 39 this week on the Big Bollywood Countdown.
0: Number 40.
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो. जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल. लगता है डर बस इतना, वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: If you're looking for motivation to hit the gym, I think Kriti Sanon in Cocktail 2 is that motivation. Playing you the top 40 biggest hits of the week. Here you have Big Bollywood Countdown. Hope you're enjoying your weekend. Keeping you company, I'm Mansi. And Cocktail 2, yes, directed by Homi Adjania. Co-written by Love Ranjan and Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna in the lead roles. Story hai Kunal aur Diya ki, jo college sweethearts hain. Long distance relationship hota hai inka test jab inke beech aati hai Ali. Ali is played by Kriti Sanon and kaafi chaos, kaafi complicated love triangle ho jata hai. Basically, वो आती है कुनाल की loyalty test करने, but I think she falls in love with Kunal, so I'm waiting again. इस मूवी के भी OTT रिलीज का. The movie was shot in Italy, a place that I totally love. इस हफ्ते Cocktail 2 से we've got Jaxe Large on number 38. Moving on to 37, Pati Patni और वो दो जो OTT पे है, and I have recommended this movie enough. यही कहना मेरी तो कर दे. And I have to say, brilliant music. Pati Patni और वो दो मूवी तो है ही अच्छी, एंटरटेनिंग है, म्यूजिक भी कमाल है. तनिष बागची, फहीम अब्दुल्ला, दिस वीक ऑन नंबर 37. एंड ऑफ कोर्स अ मूवी जिसका हम सब बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं. मैं मिलेनियल्स की बात कर रही हूँ. Releasing on the 14th of August, Imran Hashmi making a comeback from Awarapan 2 this week on number 36.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने.
4: दो या चार.
3: चार.
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में.
4: चार या
3: पांच. पांच.
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
1: द बिग बिंज विद सिड. Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 37.

0: close to me? Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड. Big 106.2, the beat of Bollywood. Number 31.

number 31 this week, the title track from Chand Mera Dil. Playing you the top 40 biggest hits of the week. You have Big Bollywood Countdown right here on Big 106.2. मैं हूँ Mansi. To be honest, बहुत उम्मीदें थी चांद मेरा दिल एल्बम से, मूवी से. The trailer looked very, very promising. The movie follows the journey of Arav and Chandni, two engineering students in Hyderabad, जिनका कॉलेज रोमांस फेसेस हार्श रियलिटीज, करियर एम्बिशंस, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अडल्टहुड. बट लाइक आई सेड, हाई एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी के. म्यूजिक से भी बहुत ही सोलफुल साउंड ट्रैक था, बट टू बी ऑनेस्ट इतना चल नहीं पाया. इट वॉज कम्पोज बाय सचिन जिगर, लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, एंड कमाल गाने हैं इंक्लूडिंग द टाइटल ट्रैक और खासियत विच इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. एंड आई फील ऐसे गाने ना कई साल बाद सडनली समबडी इज गोना पुट अप अ रील एंड इनका रीबर्थ होगा, दिल गो वायरल अगेन. बट फिलहाल वी गॉट चांद मेरा दिल ऑन नंबर 31. मूविंग ऑन नंबर 30 पर फ्रॉम विशाल भरद्वाज की ओ रोमियो.

0: 2019, a movie जिसका हम बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं. I'm talking about Awara Pan 2. Playing in the top 40 biggest hits of the week. ये है Big Bollywood Countdown. And for us millennials, this is going to be pure nostalgia. Imran Hashmi making a comeback. In fact, last week इसका trailer release हुआ है. फिलहाल number one trending पे है. And I have to say, what a brilliant trailer. Shabana Azmi, Imran Hashmi, Disha Patni.
1: क्या तड़प है ये कैसी सजा.
2: कितनी हसीन शक्ल है. मौत से मिलने का शौक है तुम्हें.
3: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
0: ऐसा लग रहा है कि हमारी जवानी वापस आ गई है. दिस मूवी विल ईट 100 सैयारास, आई एम टेलिंग यू. व्हाट अ कमबैक. कांट वेट फॉर 14th ऑफ ऑगस्ट. कांट वेट फॉर आवारा पन 2. इन फैक्ट जिस गाने का हम इंतजार कर रहे थे वो भी रिलीज हो गया. एंड यू गेट टू हियर दैट सॉन्ग इन द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन टुडे. बट फिलहाल मूविंग ऑन टू नंबर 18, वी हैव गॉट एआर रहमान, इरशाद कामिल, दिस वन फ्रॉम तेरे इश्क में.
4: नंबर 16.

0: the Big Bollywood Countdown.
1: All the music I love.
0: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Kehte hai na, try and try till you succeed. Haar na maan mere sher. मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. Number 14.

कंसिस्टेंटली नंबर वन पे ये गाना था दो हफ्ते, फिर आया नंबर दो पे, एंड इस हफ्ते नंबर तीन पर फ्रॉम धुरंधर टू, दैट वाज आरी आरी. Right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. I'm Mansi, and every weekend I play you the top 40 biggest hits of the week. It's time for top 2. Alright, number 1 se phisal ke number 2 pe aa chuka hai. Cocktail 2 se a song that I am still obsessed with. I think one of the best original gana of recent times.

राघव चैतन्य साथ में अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम का म्यूजिक, बट माशुका की जगह इस हफ्ते नंबर वन पोजीशन पे ले ली है तनिष्क बागची का ब्यूटीफुली रिक्रिएटेड गाना. वेल, दिस सॉन्ग ब्रिंग्स बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड ऑफ कोर्स द ओरिजिनल सिंगर्स अलका याग्निक एंड इला अरुण. देव री रिकॉर्डेड द अपडेटेड रेंडिशन ऑफ दिस गाना. ओरिजिनली गाना है करण अर्जुन से, रिक्रिएट किया है तनिष्क बागची ने. इस हफ्ते नंबर वन पोजीशन पे. इसी के साथ टाइम फॉर मी नारे से बाय बाय. इनफैक्ट अगर आप भी कुछ रेकमेंड करना चाहते हैं, यू फील ये गाना नंबर वन पे नहीं नंबर टू पे होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट हैपेंस ऑन आर इंस्टाग्राम. यू कैन गेट इन टच विद अस 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाय टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Number.

0: Big Bollywood Countdown.
1: All the music I love.
0: The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, बिग 106.2.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

106.2 पर दिस इज द बिग बिंज, वो शो जो वीकेंड पर आपका काफी सारा हार्ड अर्न टाइम सेव करता है, क्योंकि वन थिंग दैट ऑल ऑफ अस आदत से मजबूर करते हैं, यार वीकेंड आ गया है तो कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। ओटीटी पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, फिर स्क्रोलिंग करते करते करते करते करते रिव्यूज देखते देखते देखते देखते आपका बहुत सारा समय निकल जाता है, और ये समय ताकि आप सेव कर सकें, क्योंकि आखिरकार हम लोग बहुत मेहनत के बाद इस वीकेंड को पाते हैं मेरे वीकडे वॉरियर्स, सो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट इवन अ सिंगल सेकंड। सो आज व्हाट्स ऑन द मेन्यू कार्ड, वी गोना टॉक अबाउट आदर्श बाल विद्यालय। जब भी टीवीएफ कोई शो करता है तो एक जेनरिक स्टैंडर्ड तो होता ही है, लेकिन शुड यू वॉच इट, शुड यू नॉट वॉच इट, स्ट्रीम इट और स्किप इट, व्हाट आर द गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, ऑल दैट इज कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल राइट हियर ऑन द बिग बिंज ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You're listening to The Big Binge with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
0: Stop searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ जी।

0: This is the Big Binge with me, Sid, on Big 106.2, the beat of Bollywood. Aaj hum baat kar rahe hain about Adarsh Bal Vidyalay, and it's that show on Amazon Prime Video. It takes us to Tinki Toli on the outskirts of Delhi. This is what the trailer sounds like.
1: And action.
2: कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है और आज हम खड़े हैं ऐसे ही बदबूदार कीचड़ में। यह है आदर्श बाल विद्यालय।
3: ए चुप! अपने हेडमास्टर को बुलाओ।
4: सर, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, 49 नॉट आउट सर।
5: इस साल 10th बोर्ड्स में दिल्ली के जिन 10 सरकारी स्कूलों का सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा, उन स्कूल्स के हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज भेजा जाए।
4: इंग्लैंड वाला कैम्ब्रिज।
0: इसके बाद के मेनन की जिंदगी पलटती है और कुछ स्टूडेंट्स की जिंदगी भी। हिज लाइफ गेट्स अ बिट ऑफ पर्पस एंड देन व्हाट हैपेंस। अगर पंचायत वेंट बैक टू स्कूल, इट माइट लुक समथिंग लाइक आदर्श बाल विद्यालय। मोर कमिंग अप ऑन दिस शो, द गुड थिंग्स, द बैड थिंग्स, एंड फाइनली द वर्डिक्ट, शुड यू स्ट्रीम इट और स्किप इट, राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी, सिड।

0: Y2K hits, indie gems, Bollywood gold. Your kind of playlist. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on the Big Binge. Big 106.2, the beat of Bollywood.

This is the Big Binge with me, Sid, on Big 106.2. आज हम बात कर रहे हैं about आदर्श बाल विद्यालय. ये नया 7-episode सीरीज है प्राइम वीडियो पर. It takes us to टिंकी टोली नाम की एक जगह है on the outskirts of दिल्ली. एक गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर जो कि सिर्फ अपने नाम से ही आदर्श है. आदर्श बाल विद्यालय की बिल्डिंग इज क्रम्बलिंग. द स्टूडेंट्स आर इम्पॉसिबली बदमाश एंड जो टीचर्स हैं दे मोस्टली गिवन अप. हेडमास्टर जो है प्लेड बाय के मेनन, ये ही perfectly happy कि पढ़ाई की जगह अगर क्रिकेट खेला जाए बच्चों के साथ. जब फ्री टाइम बच्चे मांगते हैं तो दे देते हैं. ही हैज नो रियल पर्पस इन लाइफ अंटिल ही डिस्कवर्स के जो प्रिंसिपल्स ऑफ दिल्लीज बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, दे कुड गेट सेंट टू कैम्ब्रिज फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम विद देयर स्पाउसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, स्पाउस के साथ, प्लस वन के साथ. जैसे हम आपको टिकट नहीं देते, कपल टिकट देते ना, वैसे कपल पास मिलता है टू कैम्ब्रिज. सडनली हमारे बहुत ही रिलैक्स प्रिंसिपल इज नॉट सो रिलैक्स्ड एंड ही डिस्कवर्स एन एम्बिशन. उसके बाद जो होता है ना, इज एसेंशियली अ बंच ऑफ फ्लॉड टीचर्स ट्राइंग टू फिक्स अ स्कूल जो कि सिस्टम खुद भूल गए हैं. स्कूलों के हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. ये फनी है, वॉर्म है एंड ओकेजनली इट्स क्वाइट शार्प, जैसे कि TVF के बाकी शोज होते हैं ना. ये सोसाइटी पे टिप्पणी भी करता है लेकिन इन अ वेरी टंग इन चीक काइंड ऑफ मैनर. इट्स वेरी वेरी फेमिलियर. कमिंग अप, व्हाट आर द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ आदर्श बाल विद्यालय, राइट हियर ऑन द बिग बिंज.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

This is the Big Binge with me, Sid. Happy weekend to you. Aadam baat kar rahe hain about Adarsh Bal Vidyalaya. The best thing, what are the good things about this show on Amazon Prime? It's time to talk about the good things. Now, iske baare mein sabse badhiya cheez kya hai pata hai? Ye 7-part jo series hai on Amazon Prime. Ke isme na koi bhi hero nahi hai. Actually, nobody in this entire show behaves like an absolute hero. K.K. Menon हेडमास्टर का रोल करते हैं एंड ही इज़ नॉट सम इंस्पिरेशनल मसीहा जो कि आते हैं और ब्लैक बोर्ड पे स्टूडेंट्स की जिंदगी इंडियन एजुकेशन को बदलने की कोशिश. ही इज़ लेजी, ही इज़ सेल्फिश, ओकेजनली ही इज़ रिडिकुलस जस्ट लाइक द टीचर्स दैट यू रिमेंबर फ्रॉम स्कूल एंड देयरफॉर इसीलिए ही इज़ इनक्रेडिबली लाइकेबल ऑल्सो. रिलेटेबल इज इक्वल टू लाइकेबल का ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है. लेकिन फॉर मी रियल स्ट्रेंथ is the ensemble cast. Naveen Kasturia is excellent. Abhimanyu Singh gets some of the funniest dialogue. Lekin sabse bada surprise pata hai kaun hai? Archana Puran Singh. Hasne wali sirf has baith ke hasne wali Archana Puran Singh is actually a really good actor. Iska example aapko milega in Adarsh Bal Vidyalaya. And you know what? She's restrained as well. She's dry and genuinely funny in the show. And I love the children also. क्यूट प्रॉप्स नहीं है, दे एक्चुअली हैव पर्सनैलिटीज. टाइम स्पेंड किया गया है, राइटिंग स्पेंड की गई है इन डेवलपिंग दोज कैरेक्टर्स. ह्यूमर इज लार्जली क्लीन, सो यू कैन एक्चुअली वॉच दिस विद द एंटायर फैमिली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज ऑफ OTT शोज. एज वन ऑफ दोज शोज जहां पर इवेंचुअली यू नॉट वॉचिंग फॉर द प्लॉट, यू वॉचिंग बिकॉज यू इंजॉय हैंगिंग आउट विद दीज पीपल. और स्कूल के दिन याद करने में किसको मजा नहीं आता यार. सो दोज आर द गुड थिंग्स. कमिंग अप नेक्स्ट ऑन द बिग बिंज, द नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट आदर्श बाल विद्यालय. दिस इज बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

This is the Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. Adarsh Bal Vidyalaya ki hum log baat kar rahe hain. I told you about the good things. Here are the not so good things about the show. According to me, the negatives. My biggest problem with Adarsh Bal Vidyalaya on Amazon Prime is ke yaar hum ye dekh nahi chuke hain. Panchayat mein humne dysfunctional village dekha hai, dekh chuke hain. Gram chikitsalay mein dysfunctional government clinic hum dekh chuke hain. Mamla legal hai mein chaotic district court hum dekh chuke hain. Now here's a dysfunctional government school. Different building, lekin DNA jo hai wo kafi similar hai. You can almost see the formula. Matlab ek cheez hai ke formula ho. अगर हो भी तो दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर वो दिखती है कहीं कहीं पे. एक्सेंट्रिक लोकल कैरेक्टर्स, स्लाइटली ब्रोकन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, छोटा छोटे छोटे सोशल इश्यूज हैं, वार्म जोक्स, इमोशनल मोमेंट्स एंड नेक्स्ट एपिसोड. और कभी कभी ना ये शो जो है ट्राइज अ लिटिल टू हार्ड टू बी फनी. जो ह्यूमर है इट इज नॉट वेरी एफर्टलेस. कुछ कॉन्वर्जेशंस हैं दे फील लेस लाइक रियल पीपल टॉकिंग एंड मोर लाइक राइटर्स जबरदस्ती के पंचलाइन मारते हुए. 7 एपिसोड्स ऑल्सो फील स्लाइटली जेनरस. You know, it's one more example ki yaar iski film bana dete na to zyada acha hota. It stretches at certain places where the story simply just stops moving. Charming hai, but I don't think it has that panchayat level ka effortlessness in this first season. Sometimes you can see the chalk marks where the writers have drawn the joke, right? So it's that kind of a show. अगली बार व्हेन आई कम बैक फाइनली व्हाट इज द वर्डिक्ट. यार ये सब ज्ञानबाजी तो हो गई, लेकिन सिड इस शो को देखें कि नहीं देखें. कमिंग अप ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
0: Stop searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on the Big Binge. Big 106.2, the beat of Bollywood.

It is verdict time on the Big Binge with me, Sid. आदर्श बाल विद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं. बताओ सिड, अब स्ट्रीम करें कि स्किप करें? Amazon Prime का ये 7 एपिसोड सीरीज है. I'd say marginally in favor of stream it. लेकिन गलती लोग क्या कर रहे हैं, इसको पंचायत से कंपेयर कर रहे हैं. अगर आपने ये गलती की पंचायत के साथ कंपेयर किया तो ये शो खरा नहीं उतरेगा आपकी उम्मीदों पर मेरे भाई. लेकिन अगर इफ यू आर एबल टू रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन ऑफ कंपेयरिंग इट टू पंचायत, देन यू माइट एंजॉय दिस शो. द सेकंड थिंग इज, अगर आपने पेशेंस दिखाया देन ये शो आपको काफी अच्छे अच्छे रंग दिखा सकता है. गिव इट टू एपिसोड्स. हाँ, पहले दो एपिसोड तक मतलब क्लासरूम का फर्नीचर ही सेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही दो एपिसोड होते हैं यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स, देन इट काइंड ऑफ स्टार्ट्स पेइंग ऑफ बाय एपिसोड 3. तीसरी बात, इट इज फनी विदाउट बीइंग लाउड. इट्स गॉट अ टेरिफिक एंसेंबल. एक्टिंग बहुत ही अच्छी है. एंड जैसे यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, ऑलरेडी इट इज सच अ रिलेटेबल टॉपिक दैट यू कैन हार्डली गो रॉन्ग. इज इट ग्राउंड ब्रेकिंग? नो. इज इट अ लेक्चर इन एवरी एपिसोड? क्योंकि एजुकेशन की बात हो तो वो टेम्पटेशन होता है ना कि चलो लेक्चर ही दे देते हैं, क्योंकि क्लासरूम में टीचर लेक्चर दे रही है, शो में हम लोग लेक्चर देते हैं. ये बिल्कुल नहीं हो रहा. सो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस शो. लेकिन वॉर्म स्मॉल टाउन एक्सेंट्रिक गवर्नमेंट ऑफिस जॉनर अगर आपको पसंद है देन एब्सोल्युटली गो फॉर इट. आई'ड से आउट ऑफ 5 इन फेवर ऑफ स्ट्रीमिंग इट, आई'ड गिव इट अ 3.5 स्टार्स. सो Yeah, that's my verdict. Whether you agree with me or not, please do let me know. You can always leave a message on our Insta via 106.2 Big FM. That's our Insta handle. I'm Sid Seth, SIDSETH, signing off from the Big Binge. In case you have a recommendation, koi agar show aapko samajh mein nahi aa raha ki dekhe ki nahi dekhe, you can always send that recommendation as well. Ek baar phir, hamara Insta handle 106.2 Big FM.

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।